डीएनए इस आवर कोरियन लैंग्वेज कैंपस रोड में ईपीएस टोपी कोरियन भाषा परीक्षा 2027 का लागि नया मॉडल में नया कक्षा में धमाधम कक्षा संचालन भइरहेको हुँदा इच्छुकले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला। अन्य थप जानकारी का लागि भाषा प्रशिक्षक प्रेम भण्डारी मोबाइल 98461242888 र 98463686

0: একলাপ রুক রাষ্ট্রীয় বিজেতা প্রজেক্ট ওয়ার্ক ফিল্ড ভিজিট ইন্টার্নশিপ ট্রেকিং হাইকিং রিসার্চ বেসড লর্নিং পড়াই তথা খেলকুদমা জেহেন্দার র উৎকৃষ্ট বিদ্যার্থীহরুকা বিশেষ ছাত্রবৃত্তি ব্যবস্থা বিস্তৃত জানকারী নিউ গ্যালাক্সি স্কুল প্লাস টু কলেজ অফ সায়েন্স ম্যানেজমেন্ট ট্যুরিজম এন্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট নদীপুর পোখরা ফোন 061-570-210-550-307 ফিল দ্য ডিফারেন্স Dedicated to academic excellence since 1994.
1: Subarna Abhishar, Subarna Abhishar, Subarna Abhishar.
2: तपाई हाम्रै सुन्दर नगरी वालिङ बजारको एकमात्र विश्वस्तरीय आधुनिक प्रविधि सहितको स्वास्थ्य प्रयोगशाला वालिङ प्याथोलोजी प्राली सञ्चालनमा आएको छ।
1: हामी कहाँ अत्याधुनिक प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिबाट रगतमा सुगर थाइराइड युरिक एसिड कोलेस्ट्रोल तीन महिने सुगर जाँच मुटुको पीटीआईएनआर मृगौलाको जाँच कलेजोको जाँच जन्डिस परीक्षण रगतको क्यान्सर पाछेघरको मुखको क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सर जाँच दिशा पिसाब तथा खकार जाँच वृय जाँच ट्युमर मार्कर भिटामिन डी बी ट्वेल्भ रक्त अल्पताको जाँच लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षणहरू न्यूनतम गरिनुका साथै कोलबडी चेकअप विशेष छुटमा गरिन्छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लागि प्री मेडिकल समेत गरिन्छ।
2: सम्पर्क वालिङ प्याथोलोजी प्राली तल्लो वालिङ अल टाइम फार्मेसीको अगाडि।
1: सम्पर्क फोन नम्बर 063-590-018 मोबाइल 98-40-51-56-35 र 98-137-69-611।
2: न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको लागि वालिङ को एकमात्र स्वास्थ्य प्रयोगशाला वालिङ प्याथोलोजी प्राली।
3: रेडियो आदिखोला 105.4

एसबीआई ब्याङ्क अगाडि सम्पर्क मोबाइल 9570 62 866 र 9470 29 866 पर्वत जाने गेट सहारा एग्रोभेट।

0: कितना?
1: अरे हम लोग आने माँ
0: 10 बजे के छा
2: ए समय को साथ माँ जितू सुनचादी पसल
3: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
2: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

नया वर्ष को अवसर में बेको का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट। वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, डिशवाशर में वॉशिंग टैबलेट, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन और फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भाई पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद।